0: अरे आनंद बाबू,
1: आइए आइए आनंद बाबू। आप और इस मंदिर में मुझे पहचाना नहीं?
2: गाइए ना, आप रुक क्यों गए?
3: गाओ ना बेटी, गाओ
2: गाओ।